0: 65 इंच को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार
1: घर रंगाओ, खुशी बनाओ,
2: उपहार जितने अवसर पाओ।
3: बजट पेंट